इस मौसम में होशियार रहें। फ्लू, COVID-19 और दीगर सांस की बीमारियां अब भी मौजूद हैं। अपनी जाती और माहौल की सफाई का खास ख्याल रखें। खांसते या छींकते वक्त टिश्यू से मुंह और नाक ढांपें। माय साबुन और पानी से कम अज कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं। तबीयत खराब हो तो फौरन मास्क पहनें और डॉक्टर से मशवरा लें। हुकूमत का सन 2025-26 का सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी है। हर साल फ्लू वैक्सीन लगवाएं, जितनी जल्दी उतना बेहतर। अहले अफराद मुफ्त या सब्सिडी शुदा फ्लू शॉट हासिल कर सकते हैं। अगरचे COVID-19 की मकामी सरगर्मी कम सतह पर है, लेकिन हाई रिस्क ग्रुप, रेजिडेंशियल केयर होम्स के रिहायशी, 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, 50 से 64 साल के वो अफराद जिन्हें दायमी बीमारियां हैं, 6 माह या उससे ज्यादा उम्र के वो लोग जिनका मुदाफती निजाम कमजोर है और हमला खवातीन को वक्त पर बूस्टर वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। मजीद तफसीलात के लिए सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन की वेबसाइट देखिए, जिसका पता है www.chp.gov.hk। ऐलान आपने सुना दोस्तों, माई भागी का गाया हुआ एक लोकगीत हम आपको इस प्रोग्राम में पहले कई बार सुनवा चुके हैं। आज हम ये गीत आपको एक मुख्तलिफ अंदाज में मारूफ गुलकारा टीना सानी की।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एहसन खान। आप सुन रहे हैं हांगकांग की शाम अपने इंतहाई अच्छे मेजबान आबिद अली बेग के साथ। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए।

0: कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम में आज ही शामिल हूँ। कोलोरेक्टल कैंसर हांगकांग में सबसे ज्यादा आम कैंसरों में से एक है। अगर आप इसका जल्द पता लगाने के लिए बाकायदगी से स्क्रीनिंग करवाते रहें और सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाते हैं तो आपको कोलोरेक्टल कैंसर होने का खतरा कम होगा। इब्तदाई मरहले में कोलोरेक्टल कैंसर कोई अलामत नहीं दिखाता, ताहम स्क्रीनिंग से जल्द पता चल सकता है। ये प्रोग्राम 50 से 75 साल की उम्र के हांगकांग के उन रिहायशियों को सब्सिडी देता है जिनकी स्क्रीनिंग के लिए अलामत नहीं है। ये मुफ्त हो सकता है। हर 2 साल बाद टेस्ट करवाना याद रखें। मजीद मालूमात के लिए देखिए colonscreen.gov.hk। सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने के लिए बाकायदगी से वर्जिश करें, रोजाना 2 सर्विंग फल और 3 सर्विंग सब्जियां खाएं, सेहतमंद जिस्मानी वजन बरकरार रखें और सिगरेट नोशी और शराब नोशी को ना कहें।
1: आप सुन रहे हैं RTHK रेडियो 3 पर।

ही हो या मेनोपॉज में हो, फिर भी आपके लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग करवाना जरूरी है। अपनी स्क्रीनिंग का वक्त मुकर्रर करने के लिए महकमे सेहत के मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर कमीशन के विमेन वेलनेस सैटेलाइट्स, फैमिली डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट या एनजीओ से राब्ता करें। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में बुकिंग के लिए फोन करें 6631-3166। मजीद ये कि विमेन वेलनेस सैटेलाइट्स ने जनवरी 2026 से एचपीवी का सेल्फ सैंपलिंग यानी खुद नमूना लेने की सहूलत भी शुरू कर दी है। मजीद मालूमात या तरीक़ाकार जानने के लिए तीन में से किसी भी वेलनेस सैटेलाइट से राब्ता करें। हांगकांग आइलैंड फोन नंबर 2855-1333, कोलून 2855-1222, न्यू टेरिटरीज 2851-1722।

0: मकसद बनने वाला था।
1: Okay, 30, we hit engine arm, and we 30 seconds engine arm goes to descent, and we all in flank, throw, five.
0: अमेरिका के खलाई मरकज में घड़ियां रुक सी गई थी। दुनिया भर के करोड़ों लोग रेडियो और टीवी के सामने बैठे थे। चांद के मदार में घूमते हुए खलाई जहाज ईगल ने लैंडिंग की तैयारी शुरू की। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन दोनों की सांसें तेज थी। एक गलती और सब कुछ खत्म। और फिर वो लम्हा आया जिसने इंसान की तारीख बदल दी। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर कदम रखा और दुनिया ने उसकी आवाज सुनी। ये इंसान का एक छोटा सा कदम है मगर इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग। चांद की खामोश सतह पर इंसान के कदमों के निशान सिर्फ मिट्टी में नहीं पड़े थे। वो निशान हमारी सोच, हमारी हिम्मत और हमारे ख्वाबों में भी सब्त हो गए। उस दिन इंसान ने साबित किया कि आसमान हद नहीं, सिर्फ आगाज है। 20 जुलाई 1969 सिर्फ एक तारीख नहीं, ये वो दिन है जब इंसान ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया, जब साइंस, जज्बे और जुरत ने मिलकर एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसे दुनिया हमेशा हमेशा याद रखेगी। ये था इंसान का पहला कदम चांद पर, और शायद आने वाले कल में हम ये कहानी किसी और सैयारे से सुनाएंगे। इस यादगार तारीखी वाक्य के थोड़े ही अरसे बाद पाकिस्तान में बनने वाली फिल्म दुनिया ना माने में इसी की नस्बत से एक गीत पेश किया गया जिसे अहमद रुश्दी और माला ने गाया। सुनिए ये गीत।

लिबर्ट क्वाड्रेंट 22 जुलाई 2026 को दोपहर 12:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक कोलून बेस्ड जॉब सेंटर में एक जॉब फेयर का इनेकाद करेगा। 6 एम्प्लॉयर्स 110 से ज्यादा मुख्तलिफ नौसामियां पेश करेंगे, जिनमें प्रॉपर्टी असिस्टेंट, कस्टमर सर्विस असिस्टेंट, सिक्योरिटी गार्ड, कॉमीज, टेक्नीशियन, लाइफ गार्ड, रूम अटेंडेंट और मैकेनिकल फिटर वगैरह शामिल है। ज्यादातर आसामियों के लिए महज थोड़ी बहुत चाइनीज जानना जरूरी है। एम्प्लॉयर्स मौके पर ही उम्मीदवारों का इंटरव्यू करेंगे, जहां मुफ्त तर्जुमान की सहूलत भी मैसर होगी। अगर आप इस इवेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो रिजर्वेशन के लिए कॉल कीजिए।

0: इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं. आह मुस्कान, एवरी टाइम दैट सॉन्ग प्लेज आई फील लाइक आई नीड टू एडजस्ट माई पॉस्चर, सिट अ लिटिल स्ट्रेटर एंड ट्राई टू लुक 100 टाइम्स मोर सोफिस्टिकेटेड देन आई एक्चुअली एम.
1: वेल आई एम डूइंग इट एज वी स्पीक, जैक. बट दैट इज द मैजिक ऑफ खयाम्स कंपोजिशन एंड रेखा'स टाइमलेस एक्सप्रेशंस ऑन स्क्रीन. बट डिड यू नो दैट खयाम एक्चुअली हैड आशा भोसले सिंग दैट एंटायर एल्बम एट अ लोअर पिच or saw than her usual recording range, and it gave her that very deep, velvety, nocturnal quality that made the ghazal sound so incredibly intimate.
0: It's absolute genius. From that classical courtyard setting, we are moving to the golden era of the late 1960s. We're talking about the ultimate expression of devotion through the eyes.
1: Ah, Majroo Sultanpuri wrote some of the most beautiful lines for this next track.
0: Composed by the king of melody, Madan Mohan, and sung by the incomparable Mohammad Rafi for the film Chirag, this is a song that proves that when you are in love, the entire universe shrinks into the eyes of your beloved.